0: 232 यानी के 0314
1: माँ वेले माले दशार जाने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू जीता सिंगर
1: 65

0: back. Right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए. आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के होम
1: माँ वेले माल द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजे त सिंगलार शमा
1: ओ हो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चर्तची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 0938273265
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk
5: You're just seconds away from more of your favorite music on
6: 94
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk

होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजुनना ना उम्मीद शुरू बीमारानों द्वारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्रानी सुविधा कतासु के हम सुखपली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म

0: द्वानो इलाजुन ना उम्मीद शुरू बीमारानो दोपारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कतासु के हम सुख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म होल वाड़ी नुजर तर जरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब होके पता याद साथी प मेन जहांगीरी रोड बाने द मंसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03313-9494-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों हम
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: मावेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
1: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दी चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स फोन 09382732
3: सर्दी हो या गर्मी रेडियो दिलबर आपके संग संग
4: दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास
5: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर।

प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है और प्यार में मिली हार से डर लगता है, ऐसे ही होते जी। और प्यार में जो मिली हार होती है ना, इससे इंसान को बहुत ज्यादा डर लगता है। पता नहीं आप लोगों को डर लगता है या नहीं लगता।

प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में मिली दिल को हार से डर लगता है। अरे बेकार की उलझन है।

ओके जनाब, मासरा टाइम कम ना नो डेर शॉर्ट टाइम दे मेरे पास, मतलब ये कि टाइम बड़ा शॉर्ट है और मौजू जो है ना आज का हम रख लेते हैं, कौन सा वाला मौजू रखें भाई?

0: We'll be back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सवाबी। ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हो, कुचर त दग ज्वानको पवख बानी गम उनकलेशी न प रारवान वख की दग ज्वान की सासु दखाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयल स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्मई और यवाज दाना द दग दानो चकम दागु नदी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुमची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

आप लोगों का दिल भी अगर नहीं मानता तो दिल को मनवा लीजिएगा जी। दिल को मनवाना जो है ना, ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। जैसे दिल ना माने तो बंदा जो है ना क्या करे भाई। इस पे भी हम कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे। बरगैफ, अगर आप मैसेजेस करना चाहते हैं, थ्रू मैसेजेस हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैसेजेस कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए नंबर अपने पास मेरा लिख लीजिएगा आप। सिफर 334-440-0976। अगेन से नंबर मैं आप लोगों के लिए ऑन एयर करता हूँ, ये 0334-44-0976, 0334-440-0976। अच्छा, एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, अभी तक मैंने वो वाली सिम इंसर्ट नहीं की है, और मैं जैसे ही अगर सिम लगाऊं तो मुझे जो है ना एक वो सरप्राइज मिलना चाहिए मेरे सुनने वालों की तरफ से कि भाई आप लोग एक्टिव हैं, और एक्टिवली मतलब जो है ना आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आज चेक करूंगा कि क्या कोई मतलब जो है ना स्टार्टिंग में स्टैंड अप में प्रोग्राम के कौन कौन आता है और कौन कौन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाता है।

Okay, Janab. No. These sounds come then Dana Gigi. Well, Vashamil Kuyar. Welcome, come here. आज एक पुराना नंबर आप लोगों के लिए शामिल करते हैं जी, और पुराने ट्रैक में हम शामिल करते हैं, ये एक खूब लोगों के लिए एंटरटेन करने लगा हूं मैं। क्या कहने जी, क्या बात, इस्माइल और जुनेद की आवाज है जी, करार रशा नंबर है।

ऑलरेडी जनाब योजलिया दोस्ता हर कले जी एक मरतो फिर आप लोगों को वेलकम कहते हैं सिंह अमंग चल दे सहलात हुआ क्या दीजिए आओ जहुज कमदन डेर कमाली इंसान ही हम गुरुज कमदन नन मात पता हो लगे दा बर के मना ना शुक्रिया जन देव सी गण देव सी खाद बाद खुशहाल सोखल कमरा लकज कमदन मांगे।

जनाब, दिल के सब्र के हवाले से अगर मैं यहाँ ये बात करना चाहूँ तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिल का सब्र भी अजीब चीज है। कभी इंसान बाहर से बिल्कुल खामोश होता है, मुस्कुरा भी रहा होता है, लोगों में बैठा भी होता है, मगर अंदर कहीं जो है ना दिल मुसलसल बेचैन रहता है। और फिर लोग कहते हैं सब्र करो, मगर दिल आखिर सब्र करे भी तो कैसे सब्र करे जी, ये भी एक सवाल है ना। दिल का सब्र सिर्फ खामोश रहने को नहीं कहते जनाब, दिल का सब्र वो होता है जब इंसान अंदर से टूट रहा हो मगर जो है ना फिर भी किसी के लिए बद्दुआ ना करे, जब इंसान किसी को बहुत ज्यादा याद करे मगर फिर भी जो है ना खामोश रहे, जब दिल चीख चीख कर किसी को मतलब जो है ना पुकारना चाहे मगर जबान खामोश रहे, यही असल सब्र होता है। और कभी कभी इंसान किसी के इंतजार में सब्र करता है, कभी किसी की नाराजगी में या किसी की नाराजगी पर, कभी किसी की दूरी पर, और कभी किसी के बदल जाने पर। लेकिन सच कहें जनाब तो यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब सामने वाला इंसान ये समझ ही ना सके कि आपने उसके लिए कितनी खामोशियां बर्दाश्त की हैं। और दिल को सब्र क्यों नहीं मिलता? हाय, वैसे ये बात भी ठीक है भाई कि दुनिया नशा शुआ के ता दुनिया तक ना बल्कि चकमदन मा तक आता। थोड़े दिल को सब्र क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दिल चीजों से नहीं बल्कि जो है ना एहसास से जुड़ा होता है। अगर दिल किसी से मोहब्बत कर बैठे, किसी की आदत पड़ जाए, किसी की आवाज सुकून लगने लगे, तो फिर दिल आसानी से खुद को अलग नहीं कर पाता। वो बार बार उसी इंसान की तरफ जाता है, उसी की मतलब जो है ना तरफ एक मतलब एहसास ढूंढता है। और अजीब बात यह है कि दिमाग हजार बार जो है ना समझाता है कि छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। दिमाग हमारा समझ जाओ, आगे बढ़ो, मगर दिल हर बार जो है ना कहता है बस एक बार जो है ना और यो पेरे ब्या सब पता लगी पदीज कम दे नो हालात चेंज। कुछ लोग कहते हैं कि वक्त हर चीज ठीक कर देते हैं, लेकिन बाज दर्द सिर्फ वक्त के साथ खत्म होते हैं। बस इंसान उन्हें छुपाना सीख लेता है, फिर इंसान हंसता भी है, बातें भी करता है, लोगों में भी रहता है, मगर रात के इस पहर जब खामोशी उतरती है तो दिल फिर वही पुरानी बातें दोहराना शुरू कर देता है। और दिल के सब्र के हवाले से यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, दिल का सब्र असल में उम्मीद से जुड़ा होता है। और जब तक दिल में उम्मीद बाकी रहती है ना, तब तक इंसान सब्र करता रहता है। शायद वो वापस आ जाए, शायद वो बदल जाए, शायद वो एक बार फिर जो है ना पहले जैसा हो जाए। और जब उम्मीद खत्म होने लगती है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है, फिर इंसान किसी से शिकायत भी नहीं करता, बस अंदर ही अंदर जो है ना थक जाता है। कभी आपने महसूस किया होगा कुछ लोग बहुत सब्र वाले लगते हैं, वो चीखते नहीं है, रुलाते नहीं है, शोर नहीं करते, मगर हकीकत में वो अंदर से सबसे ज्यादा जो है ना टूटे हुए होते हैं। क्योंकि हर खामोश इंसान पर सुकून नहीं होता जनाब, कुछ लोग सिर्फ इसलिए खामोश होते हैं कि उनके पास जो है ना अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहता। और मोहब्बत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मोहब्बत में दिल का सब्र सबसे ज्यादा मुश्किल है, और बहुत ज्यादा मतलब जो है ना ये मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ इंसान को तकलीफ भी उसी से मिलती है जिससे जो है ना सुकून मिलता था। फिर दिल हर रात यही सोचता रहता है, मतलब जो है ना एक ही मतलब बस सोच आती रहती है कि आखिर कमी कहाँ रहेगी है, आखिर कमी कहाँ रहेगी है। ये चीज बहुत ज्यादा बंदा सोचता है, और इसी सोच पे ना मतलब जो है ना अपने शब रोज, अपने दिन रात ये गुजार देते हैं।

मैं भी ऐसे ही करता हूँ जी, मतलब जो है ना काली काली रातों में हसीन हसीन ख्वाब, अच्छे अच्छे ख्वाब, खूबसूरत खूबसूरत ख्वाब जो है ना मैं भी देखता रहता हूँ। और आप भी देखते हैं कि या नहीं देखते हैं? देखें कभी ख्वाब? हाय, ख्वाबों की दुनिया के हवाले से मैं बात करूंगा जी।

अच्छा हसीन ख्वाबों के हवाले से मैं यहाँ कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जनाब। हसीन और रंगीन रातों के ख्वाब भी जो है ना बड़े अजीब होते हैं। ये रातें सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये एहसास भी लाती हैं, मोहब्बत भी लाती हैं, किसी खास इंसान की यादें भी लाती हैं। कभी खिड़की से आती हुई ठंडी हवा, कभी चांद की हल्की रोशनी, और कभी खामोशी में किसी की आवाज का ख्याल दिल को अजीब सा रोमांटिक बना देता है ना। और बाज रातें ऐसी होती हैं कि इंसान चाहता है कि वक्त यहीं रुक जाए, न सुबह हो न शोर हो, बस खामोशी हो, चांद हो और किसी अपने की बातें हों। और फिर उन लम्हों में दिल की रंगीनियां ख्वाब बनाना शुरू कर देती हैं जी। कभी किसी के साथ लंबी लंबी बातों के ख्वाब, कभी किसी की आंखों में खो जाने का ख्वाब।

मैं लिसनर्स यहाँ ये बात भी करना चाहूंगा कि आप भी अब भी आप मुझे तवज्जो से ही सुन रहे हैं, और सच कहें तो यही तो हमारा मतलब जो एक रिलेशन है, या यही तो हमारे इस ताल्लुक की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं रहा, एक एहसास बन गया है, एक आदत बन गई है, एक ऐसा नशा बन चुका है जो कि मतलब जो है ना उतरने का नाम नहीं लेता। कुछ एडिक्शंस, कुछ नशे ऐसे होते हैं जो कि इंसान भूलना भी चाहे तो वो नहीं भूल पाता। अब मुझे सच बताइएगा कि ये आवाज, मेरी ये आवाज, ताहिर की आवाज, ताहिर की ये आवाज किस किस का नशा बन चुकी है। आप मुझे 0334440976 पे अपने पैगामात भिजवा सकते हैं, और पैगामात में दिल खोल के बात ये कर सकते हैं कि भाई ताहिर हमारे दिल के ऐसा साथी हैं। मैं यहां माइक्रोफोन पे माइक्रोफोन के सामने बैठकर बातें कर रहा हूं, और आप वहां खामोशी से सुनते हुए शायद मुस्कुरा भी रहे हों, कभी सोच में भी गुम हो जाते हों, और कभी किसी खास इंसान को याद करने लगते हों। यही तो असल तहलक है जनाब, सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और सच पूछें आप लोग, ये आप लोगों और मेरी ये जो मतलब आप लोगों से वाबस्तगी है ना, ये सिर्फ एक आरजे और लिसनर का ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे प्रेजेंटर्स, बहुत सारे आरजेस, बहुत सारे मतलब डीजेस यहां माइक्रोफोन पे आते होंगे, बातें करते होंगे, होंगे नहीं बल्कि करते हैं। लेकिन इंसान की, हर एक इंसान का एक जुदा टेस्ट होता है ना, मतलब जो है एक डिफरेंट टेस्ट होता है। और सच पूछें तो मैं जैसे बात कर चुका हूं पहले कि ये जो मेरी वाबस्तगी है ना, ये सिर्फ जो है ना एक आरजे और लिसनर का ताल्लुक नहीं है, ये मोहब्बत का ताल्लुक है, एहसास का ताल्लुक है, एतमाद का ताल्लुक है। क्योंकि हर रात हजारों आवाजें होती हैं, मगर आप फिर भी यही आवाज सुनते हैं, शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं इन लफ्जों में आपको अपनापन महसूस होता हो। कभी आप लोगों ने गौर किया होगा, बाज रिश्ते नजर नहीं आते हैं मगर दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। ना मुलाकात होती है, ना एक दूसरे को देखा जाता है, फिर भी अजीब सा अपनापन महसूस होता है, अपनायत महसूस होती है। बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक मेरा और आप लोगों का है जनाब। मैं यहां बैठकर जब कहता हूं कि कैसे हैं आप, तो ये सिर्फ जो है ना एक रस्मी सवाल नहीं होता, ये वाकई दिल चाहता है कि आप खुश हों, पुरसकून हों, मुस्कुरा रहे हों। और शायद इसलिए जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, इसलिए कि जब आप मैसेजेस करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने एहसास बताते हैं, तो लगता है ये कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये खानदान है, एक फैमिली है, ये एक रिलेशन है, ये दिल का रिश्ता है। बाद लोग कहते हैं कि रेडियो सिर्फ आवाज है, मगर नहीं जनाब, रेडियो आवाज नहीं, एहसास है। ये वो जगह है जहां कोई अकेला इंसान भी खुद को तनहा महसूस नहीं करता, जहां किसी की उदासी दिल को ये सुकून दे देती है कि कोई तो है जो दिल की बात कर रहा है। और जनाब ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी एक अजीब तरह का रिश्ता है, और इसमें कभी सामने होना जरूरी नहीं होता। यकीन माने, मैं एबटाबाद स्टेशन से प्रोग्राम करता था, अब भी इंशाल्लाह जो है ना मेरा एबटाबाद स्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, और वो बहुत जल्द मैं यहाँ भी आप लोगों को बता दूंगा कब स्टार्ट होगा या किस टाइम स्टार्ट होगा। तो उस स्टेशन की आवाज या फ्रिक्वेंसी जो है ना काम करती है सवाबी से, क्योंकि मुझे काफी सारा फीडबैक आता रहा है एबटाबाद, हरिपुर या फिर लाइक अटक वगैरह सराउंडिंग एरियाज में वो मतलब जो है ना स्टेशन चलता रहा है। तो वहां भी मैं ये बात करता रहा हूँ भाई कि मैं, मुझे जो है ना उस कैटेगरी में शुमार ना कीजिएगा कि जो मतलब आजकल एक खिचड़ी बनी हुई है मार्केट में, कमर्शलाइजेशन की दौड़, फेम, अपना नाम, हल्क जगमना नामे जामे दफारा डेर ज्यादा लगी है ना, मतलब मुझे उस कैटेगरी से हटके अलग रखिएगा। क्योंकि मैं मतलब यहां पे माइक्रोफोन पे जब आता हूं तो मैं ये मेरे जो लफ्ज अदा हो रहे होते हैं या जो मेरे लिप्स जो है ना फ्लिप कर रहे होते हैं या
मतलब इनसे जो अदा हो रहा होता है तो ये एहसास अदा हो रहा है, ये सिर्फ जस्ट जो है ना अल्फाज नहीं होते। और आजकल के इस टाइम में, आजकल के इस दौर में अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत ज्यादा हो चुकी है कि हर एक बंदा जो है ना अपने अपने एक नशे में गुम है, अपने एक खुमार में गुम है, अपनी एक मस्ती में गुम है, अपनी एक दुनिया में गुम है। जनाब ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी अजीब है, इसमें कभी सामने होना जरूरी नहीं होता, कभी सिर्फ एहसास ही काफी होता है, कभी किसी की आवाज ही दिल को सुकून दे देती है, कभी किसी का अंदाज एक गुफ्तगू ही इंसान के दिन भर की थकन उतार देता है। और आज रात अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे लफ्जों को महसूस कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि ये ताल्लुक सिर्फ फ्रिक्वेंसी का नहीं रहा, ये दिलों का ताल्लुक बन चुका है। मैं बोलता हूँ आप खामोशी से सुनते हैं, मगर बाज़ औक़ात खामोश सुनने वाले लोग ही सबसे ज्यादा जो है ना महसूस करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि जो दिल से सुनते हैं ना वो लफ्जों के पीछे छुपे एहसास भी समझ लेते हैं। और सच कहें अगर, तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग ना हो, आपकी मोहब्बत ना हो, आपकी तवज्जो ना हो, तो ये आवाज भी अधूरी लगेगी, ये रातें भी खामोश लगेंगी, क्योंकि प्रोग्राम सिर्फ आरजे से नहीं चलता, सुनने वालों की मोहब्बत से भी चलता है। तो आज की इस हसीन रात में दिल से आप लोगों का शुक्रिया, उन तमाम लोगों का जो हर रात हर एहसास और हर खामोश लम्हे में इस आवाज के साथ जुड़े रहते हैं। आप लोग सिर्फ लिसनर नहीं है, इस तेरी और मेरी बातों का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। और जाते जाते यही कहूंगा कि प्यार मोहब्बत के नाम पे कभी किसी को धोखा ना दीजिएगा, धोखे में ना रखिएगा। बाय बाय, टाटा, फी अमानिल्लाह, तल्ले पाकिस्तान, यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। अल्लाह पामान एंड आई लव यू।